का बदलूगा अचानक मनुष्य से रूप में जमा कर पुनर्व्यवस्था नहीं तो बोला पाया मोटो का कैसे करेगा मनुष्य इधर मैं फैसला दिया इधर कुछ जा रहे

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस जोविंटुरी नी लिली नी जोविंटुरी नी पापेल जोविंटुरी नी ना कंडीशन जोविंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हाँ ना इन जोविंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इधर पॉइस हमने मेंसाजन माका तंब जोविंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसेदारे ने हने सनी आन हुसी तो तेवरिया बारा कीड़ा हुसी तेरे ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी उने मालुक सीरा तंबने मा खाउ दे हन से हाउ ये ना मुरारा हाउ दे हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी सोसेदारे तंबे इंटरेस हुसी इतने हमुतुक ने इंटरेस बस सोसेदारे ने मक इम्पोर्टेंट है अतुलोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे साई आजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला देहन साला हाउ इस टेकमेंट तुरा करते ते बजो वेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ ने आमन से बन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ ने इरेस्पोंसिबिलिटी रे हुरी कॉन्ट्रा नि निया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा से बन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमैच्योरिटी रे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी रे मकाउ साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस देन लॉस साला देन साला इदेन मक इंपोर्टेंट लेवल रे निया या कार्बो निया एलिट Entau ni salah, ni los, ita consider ni salah mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important tetap tetes. La bela, saifel alegria bah kritiku. Kritiku ni euma, how biasa tetes ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene. Ola bela dia ane hadomi hau. Se benira ola hadomi une maluk sira. Bahau une kolega sira masa watete. Maluk jo venturi sira. La bela dia ni mi hadomi hau. Se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal jo venturi sira.
2: Oke dia. Bahau une maluk jo venturi hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfura atau hoto bayi mi, maybe sementara iha mensajen deluta kata dadang susidar nerebe makita muris ba, ni susidar nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nerebe mak opresor sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produktivu. Atu bele haraun susidare jane be mako klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kule kon basunta ansuntul lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susida lalehan ide herai ni mak susidare laho klase nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Hey, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.